राग गौड़ी दीपकी विच ऋषभ कोमल, मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण, वादी षड़ज, संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

भाग में सोपण कितना है तो उद्धम उद्धम करें दिया जी उद्धम कमान दिया सुख पुण्य उसी उत्तम की है अपनी तरह ने सुखा नहीं छड़े दूर मेरी चल के गुरु की अस्थिरता सर्वत माई माई मां गुरु की गोद में यह थोड़ा उत्तम कई कह रहे हो जी ये कोई साढ़े वर्ष हो रहा है जो गुरु प्रेरेगा गुरु कहे जाता गुरुद्वारे जाऊ गुरु की कृपा होगी तो बाणी पढ़ा ओरी तो सरे गुरु कले नहीं कहता बाणी ना पढ़ा गुरु नहीं कहता कि सत्संग में ना फिर ये हुज्जत है ये मन रख नहीं गुरु तो प्रेम है कित जाए मुझे सत्संगी जिथे हर काल हर नाम बिलोई ये ना करते बहाने कि मेरे की मत आपे गुरु बाणी पढ़ाएगा आपे अमृत चढ़ेगा कदे नहीं किया गुरु आपे रोटी खवाएगा और वास्ते सारा उपराना कर सब भी करते सारी समग्री भी कर ले जाके प्रशादा तैयार होंगे फिर प्रशादे वास्ते उद्धम है आत्मक भोजन वास्ते भी जो तुम की उद्धम करें दिया जीव तो कमाल दिया सुखपुंच त्याय दिया तू सब मिल नानक उतरी चिंत कमाई कर सिख का कर्म तीसरा कर्म है उस वाहगुरु का सिमरन नानक उतरी चिंत जी चिंता भी अब सानू हर वे छाड़ दी रही कदम कहते दूर हो गया कली का पिता जी ने तो सिख को महान उद्यम से ने थोड़े उद्यम दिया तो दुनिया की धड़क पै पंजाब की धरती तुम किस तरह सुधारे उपज्वाला बनाए सारे देश को अन्न मिलता है इतनी मन टेक्निकल व्यू के नाल गुरु ने थोड़े उ बड़िया बखी दुनिया ने यह सिद्ध कर दिया है कि सारे देशवासी खास करके गुरु के सिखा के अंदर महान बख्श जेडे काम हाथ पाते चढ़िया गुरु ने नानक नाम चढ़ी कदा क्योंकि नानक के नाम नाल बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज के दो अर्थ करते नानक नाम चढ़ी कदम जिन्हें को धन गुरु नानक पातशाह जी का नाम है वो भी सदा चढ़ी कदम या नानक नाम चढ़ी कला जिन्हें को गुरु का नाम है वो चढ़ी कला जाए कि किसी का बुरा नहीं सोचता तेरे भाने सर्वत किस करनी है सिमरन धर्म की किस ये भी बंदगी बाणी पढ़नी है भी वाहेगुरु का जाप करना यह भी बंदगी दान पुण करना यह भी बंदगी लिखा काल खाए के सत्तो दे नानक रहा पछाने नानक चुनिया खटिया जे भर जाने कोए सुरते चुनी ज्ञान की जोगी का जग
योगी की चुनी कैरी है जबीर सुरते चुनी ज्ञान की योगी का जत होए राजे चुनी न्याय की तिक्र ही का तत् दान गृहस्थी का धर्म है दान सुन दान सुन पीते हैं सकते रहना संत करके भी माया दंग मारन लग गए बहुत ही माया है जी दंग मार दी है किस तरह हमे आ जाए कहीं माया का ही मनता माया का ही मान नहीं तो वाहगुरु की बख्श यह तो वाहगुरु की दात ये वाहगुरु की अर्पण कर दे रही पानी चलता पवित्र रहा है तन चंगे पास गुरु के लेखे लगता रहे तो वो सुखदाई है दान पुन करना है सिमर सत्संग करके लिए यह भी सिमरन स्वादन स्त्री पति की सेवा कर रही है यह भी बाबा जी बच्चे चाहते ये कोई बीबी घर माड़ा फेर रही रोटी का टाइम हो गया प्रशादा तैयार नहीं किया पति घर आया भगवान प्रशादा तैयार होया क्योंकि टाइम है रोटी का खाने उन्होंने कहा स्वामी मैं तो नाम से जपती रोटी आप पका के खाई बाबा जी कहते थे इसका नाम नहीं है ये मन मत तेरी माड़ा फेरी ये मन मत है नाम की है ये रोटी का टाइम हो गया तो अपने पति वास्ते सोना पुछा का प्यार करके सतने क्योंकि कम कर दिया या उन्हें कम किया तो सवेरे भोजन त्याग करना यह भी सिमरन है बाणी भी पढ़ती है हर टाइम सतगुरु जी पहले पहले हर कोई जागे किसी महापुरुष ने किए सारी दुनिया सारे जाग रही दूजे पैरे भोगी तीजे पैरे तस्कर जागे तस्कर के अंदर चोर तीजे पैरे तस्कर जागे चौथे पैरे जो और समय योगी ने जाग गुरसिख ने जाग अंदर हम पिछल राती जागर जाके की करना नाम दान इशनान करना इशनान करना ते बह के जपना सपना दान पुन नाम दान इशनान करना फिर मिठा बोलन निव चलन नाम जप के बाणी पढ़ के नहीं कि लोगों ने झगड़ी करता नहीं करता तेरे वर्गा तो नहीं मिठा बोलन अमृत पीता है तो रचना मिठास होनी है मिठा बोलन निर्जल निम्नतर करे गुरु के सिख का मन नीवा तो मत पर अजकल गुरु चल गया तो मन उच्चा हो गया तो मत नहीं निकल ताइ सिखी भी जी खुशबू है साढ़े अंदर कट मिठा बोलन निर्चलन हथों दे के भला मनाए तो देखे तो शुक्र करना पाचा तेरी कृपा थोड़ा सोना खाऊ थोड़ा सोना तो थोड़ा भाई साहब जी ने लिखे सिखदा है कर्म थोड़ा सोना तो थोड़ा पर मिकदार भी नहीं कितना थोड़ा समीए तो कितना थोड़ा खाई जी अगे अठ रोटियां खादियां तो सत खा ली जे अगे बारह घंटे सौनिया तो दस घंटे सौनी कोई मिकदार नहीं कोई समीए ने बाबा जी की भी बेनती की बाबा नंद सिंह जी महाराज बेनती की महाराज आपके पत्र बाबा जी कह लगे इतना थोड़ा खाओ जिन्हें नाल सारा दिन शरीर पीड़े ही ना खते डिखा ही ना वो भी कोई खाने बाबे ने किया है सबरत मिठे बनिए सुनिए सारू ने निकट तुरती मुख बोलने मारग नाग किए छत्ती अमृत भाव है जाको नजर करे बाबा होर खाना तुझी खुआर जित खाते तन पीए मन में चले विकार वो खाना की खा जे मन विकार ही बने रहे हर वेले पीने ही नहीं मुसलमान रोजे रखते सिख रोज रोजा
ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਖੱਟੇ ਨਿਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਾਕਾ ਕਰ ਲਏ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਰੋਜ਼ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇਤਨਾ ਥੋੜਾ ਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬੋਝਲ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਤੇ ਇਤਨਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੌਂਕੀ ਨਾ ਇਤਨਾ ਅਲਮਹਾਰ ਸਰਬ ਸੀ ਥੋੜਾ ਸੋਣਾ ਖਾਣਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਫਿਰ ਕਾਲ ਖਾਏ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲ ਕੇ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੁਧਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਾਮ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਨਿਤਨ ਕਰ ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਖ ਪਰਚਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੇ ਮਨ ਪਰਚਾਏ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਸਾ ਆਸਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਰਨ ਚਲਾ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਦਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕੀਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿੱਤੇ ਘੱਟ ਮੇ ਸਾਹ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੂਪ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਸਰੂਪ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੇ ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਗੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਤਮੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰੜਿਆ ਸੈਦ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਛੇਤੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੈਦ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰੋ

के सुर लगा ते कह लगा पुत्र क्या तू नौ महीने भी ने मैं नौ मिनट भी नहीं ठहरते सैयद गुरु विशाल क्या भाई सज्जा गल तो गुरु का हुक्म ही मनिया है तेरी को क्योंकि हुक्म इस वक्त हुक्म दे मालिक दी बख्शिश नाल जेड़ा हुक्म देना उसकी रहमत भी ना तो हुक्म नहीं मनिया तो मैं जरूर मनना ये अपने आप रह गए तो गुरु जान के तेरी सेवा ते जे भजे नसेगा ना तो सामने कोर्ट भी बंद भी कर रहे हैं मैं गुरु का हुक्म मनना तुर लगा मैनू कौन है बंद करने वाला बुद्ध विशा ने मुरीदा ने इशारा किया इन्होंने पकड़ के भाई सज्जे कोठी बंद कर बुद्ध विशा मैनू छड़ मेरा बाल बच्चा भुख नाल मर जाए बुद्ध विशा ने कहा नहीं जिन्हें हुक्म दिता है वो आपे रक्षा करेगा ये तेरे मन की कमजोरी की रक्षा करनी बुद्धू शाह आवे तो गल्ला बुद्धू शाह दिया सुन सुन गल्ला सिख धर्म बिगाड़ा बच खा के मुश्किल नाल उठाया उसने मुंह च पानी पा के कहता सतगुरे की कीता मैनू उधर कैद पता के मेरा बाल बच्चा सब उनकी मर्जी कौन खिलाती जा कोठी बंद एक दिन बीतिया कुछ नहीं खादा पीता दूजा दिन होया बुद्ध विशा ने किया सजे प्रसाद तक नहीं नहीं मैनू भुख नहीं तीजा दिन होया सोचे लगा मैंने बाल बच्चे तो भुख नाल मर गए हो गए तू भुखा क्यों मरना अब तो सही है भुख बड़ी राज है भुख बड़ी पर्वन है फरीद ने क्या मौतों को हो गई इंसान भुख पीछे कई मेरी बड़िया बड़िया गलतियां कर मारने की लिखा है दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सख्त वार जमदूत एक दुख रोग लगे तन खाए व्याज न होने का दुख अर्थात पानी छकल लग गया नौ महीने भी समा नौ बीत जन समय का पता ही नहीं पलों दिया घड़िया घड़िया ने सकेंद सकेंदा के दिन मिनटा के घंटे घंटिया ने पैर पैर के दिन दिनों ने हफ्ते हफ्तिया ने महीने महीनों ने साल साल सदियां सदियां के युग बीते जा रहे युग अखी केरे माट के पल पल गई वे हाए पल पल करके ये आयु बीती पता ही नहीं लगता मन जंजाल ना छोड़ी जम दिया जब है दिन के पैर पैर के घड़िया हजूर कहते आव घटे पर भी है नौ महीने लै भाई सज्जा तेरे पौ पन मुकले हैं अज नौ महीने बीत गए हैं तू जा सकते भाई सज्जा तू जाओ किधर जाओ बाल बच्चा तो भुखना मर गया हूं कोई आसरा नहीं किसे पासे जावा बुद्ध विशा ने कहा जी मेरे को पुछता है तो गुरु को चला है गुरु को बुद्ध विशा आओ तो मेरा कोई बाल बच्चा बचे नहीं तेरे कोई बच भी गया होगा तो उन्होंने भी रोक के मरांगा कि गुरु का नाम भुल के नहीं जाए बंदी छोड़ के चंगा बंदी छोड़ गुरु नौ महीने की कैद दे मैं नहीं जाना सही गुरु शाह ने कहा भाई सज्जा ये भी कोई राज है तू नहीं समझ
ਮੱਛੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਸਾਗਰ ਕਿੱਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੜੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਪਰਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖਣ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਰਿਆ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ।

राजस्थान और क्यों दे तीस पका छका सलुक सिर से पागी कोई नहीं कुर्ता भी कोई नहीं था नगन

की बिजली सुदामे का नाम सुनिया ही भगवान ने अपने तखत को चाल मारी आ गए कहने लगे हो भगवान मेरा मित्र मेरा प्यारा सुदामा भगवान कृष्ण जी भजे पहुंचे जिथे सुदामा खड़ोता है जाके की कीता दूरों देख वाहगुरुदास जी ने दूरों देख दंडौत कर दंडौता करके दंडौत जान दे एक तो होते ना अपना मत्था टेक ले एक है दंडौत दंडौत हो जाए सारा श्री लम्मा पर आप रोज कर दिए दंडौत बंधन अनुभव आप कमारे हो कितने कितने मुझे प्रेम यानी खास दिन जो दूर हो गया थे दंडौत कर सारा शरीर पूजा करके दो मिनट जोड़ के एक गुरु के नमस्कार भगवान कृष्ण जी ने सुदामे देखे जाके पहला दंडौत की दोनों देख दंडौत कार्य भाई साहब जी लिखते हैं

0: के पर रखना चार प्रकरण करके सुनाने से जाते हैं सारा दिन मित्र अजकल मित्र स्वाद पूरा है तो मित्र हम तेरे स्वाद पूरा नहीं तो वो मित्र मुखात्मक भी कर लगी निंदा भी कर लगे जित दिन स्वाद ना उपजे तित दिन बोलन गम सुदामे दिया प्रकरमा करके छाती मार लाया मान लह के आए तो जिस आसन से आ बैठे सब सुदामे ने बिठा सुनी फिर आज का जाओ मेरा मित्र आया है जल ले आओ सुदामे ने चल को रुकमणी से राज का पानी कैसे ले भगवान कृष्ण सुदामे नाम मिठे मिठे भजन कर सुदामेय कितना चिर किसे नहीं कुमार कर जिसे तेरी हालत की होगी तेरी दिशा भी बन गई है ऐसे बिहार बिहार मनुष्यों एक कंटक जाल पड़े पद को तेरे पैर झंडे चुके जिसकी कोई भी थी सुदामा जी को
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

गुर अंग लिखी ते कुमारे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के नाम विचारे।

हमारी जेहबा एक रंग हर के गुण अगम अथार हम क्यों कर जब आया हर तुम बड अगम अथार।

कमल गुण कही है तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कमल गुण कही है जिहबा एक तू समझ।

वड्डी हूँ बड़ा अबार तेरा मर्दबा वड्डी हूँ बड़ा अबार तेरा मर्दबा निर्मल निर्मल सूजा निर्मल निर्मल सूजा सुचो सूजा सुचो सूजा सुचो सूजा सुचो सूजा अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा ऊंचो ऊंचा ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रब तेरो थान ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रब तेरो थान

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा ए शब्द जो आप जी ने श्रवण किया है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नूं असी जो खो चुके हाँ, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं, अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का वो प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उचारण कीती है जिथे वो आखदे हन असी मंजिल दे करीब ते की जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए। पंक्ति सुन वाली है, कहंदे हन साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहिंदे यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों उसकी मंजिल नालों उसके डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, इसका अर्थ यह होया कि यात्रू नू यह नहीं पता कि वह जा किधर नू रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मतलब कि तुहाडी हालत यह है कि तुहानू यह पता नहीं तुसी किधरों आ रहे हो और किधर नू जा रहे हो, बस ए आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे ते कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो। जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

कबीर साहब सत्संग जी हो, दुनिया विच बड़े बड़े खुशी दे मौके हैं और तरह तरह नाल दुनिया अपने मन की खुशी जाहिर करती है। इस दुनिया विच जेड़े भगत लोग हैं, जेड़े रब दे बन जाते हैं, जेड़े परमात्मा दे चरण अपने मन विच वसा लैंदे हन, जिन्हां नूं अपना सच्चा पति रब लगन लग पैंदा है, एका पिर सखियां सब पिर की, खसम ते ओ आप है असी ते सब दासियां हां। कबीर साहब कह रहे हन, मैं किहो जिहा दूल्हा मैनू पाया, मैनू रब वर्गा दूल्हा मिलिया है। राम राय सो दूलो पायो अस वड भाग हमारा। बराती मेरे नाल कौन हन, मेरे पंजो तत्। रब ने मेरे ते कृपा कीती है, मेरे मन रूपी सेजा ते आके चरण पाए हन, मेरे ग्रह आए राजा राम पथारा। सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट तेतीस तेती करोड़ देवता इस गल दा साक्षी है। की साक्षी है, कह कबीर मोए ब्याहे चले हैं। पुरख एक भगवान, पुरख एक है, पुरख ओ वाहिगुरु आप है, असी ते सब उसतियां दासियां हां। तू ठा करो बहरा करो मैं जे ही कण चेरी, मेरे वर्गियां लखां दासियां करोड़ां दासियां तेरे दरवाजे ते चाड़ू पईयां दिंदियां हन। मैं जे ही कण चेरी राम तू सागरो रत ना करो, हौ सार ना जाना तेरी राम, सार ना जाना तू वडदाना कर महरमत साई, कृपा कीजे सा मत दीजे आठ पहर तुद त्याई। ऐसी मैनू मत दवो, ऐसी मेरे ते कृपा करो कि मैं आप जिनू अठो पहर हर घड़ी तुहानू जपा वाहिगुरु। ते जिन्ना रे वाहिगुरु नू जपया उन्हां दी जिंदगी दा नाम ही सुख बन जांदा है, ते जेड़े रब तो बिना हन ओ दुखी हन, ते जेड़े रब वाले हन जेड़ियां खसम वालियां हन ओ सुखी हन। ते गुरु कृपा करे ये सुहाग तुहाडे जपण वालियां दा बनिया रहे।

का शब्द रतन है जित जड़ा शब्द रतन जिस मन लगा ए हुआ सुबह शब्द से ते मन गया।